0: along your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9 a.m. City FM 89.
3: Trending today.
4: After their Coachella debut, Madonna and Sabrina Carpenter have released their collab single titled Bring Your Love. The song comes as Madonna continues to ramp up the rollout for her upcoming album, Confessions 2, her first album in 7 years.
5: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस। जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें,
6: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ,
5: क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक,
6: जो तुम चाहो।
5: डाउनलोड दी ऐप नाउ।

0: टेलीनॉर लाया मंथली कॉल प्रीमियम ऑफर. अभी सिर्फ 500 रुपए में ऑफर लगाओ, 3000 तमाम नेटवर्क मिनट्स पाओ, अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा महीना खुल के करो बात, क्योंकि टेलीनॉर है ना यार. जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू करें.
1: Have you ever dreamt of snorkeling in the Great Barrier Reef? Rising seas are bleaching coral and threatening wildlife. And that dream could vanish if climate change keeps getting worse.
2: Breathe Pakistan.
3: A Dawn Media Initiative.
2: Let's weather the change
3: together.
0: Mubarak ho! Youfone and Telenor ki calling families milkar ho gayi hain more than 7 crore. तो यूफोन से टेलीनॉर एंड टेलीनॉर से यूफोन करो लातादात कॉल्स किसी भी पैकेज पे और रहो कनेक्टेड मोर देन एवर बिफोर.
4: माइसीलियम, द अंडरग्राउंड सेवरल माइल्स लॉन्ग नेटवर्क्स ऑफ फंगल थ्रेड्स विद इन अ फॉरेस्ट दैट कनेक्ट एंड नरिश ऑल ट्रीज एंड अलाउ न्यूट्रिएंट शेयरिंग बिटवीन ट्रीज व्हेन अ डिजास्टर स्ट्राइक्स द फॉरेस्ट.
5: माइसीलियम इज द नेचर्स अनसंग हीरो. वी नीड टू एम्युलेट द पावर ऑफ माइसीलियम टू जनरेट द हीलिंग पावर of mycelium.
4: We need to unite to protect the victims of climate change.
5: Your life truly depends on one network, and clearly that's the one that lies beneath your feet.
4: Emulating mycelium's network effect is Pakistan's first line of defense against catastrophic climate change.
5: Join the worldwide movement against climate change.
2: Breathe Pakistan.
3: A Dawn Media Initiative.
2: Let's weather the change
3: together.
6: Principal Partners, United Nations Pakistan, Government of Khyber Pakhtunkhwa, English Biscuit Manufacturers, Capital Smart Motors, OGDC and CVF V20. Supporting Partners, Federal Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Syngenta Biologicals, Mizan Bank Limited, DHL Express, Asian Development Bank, Cambridge, Coca-Cola Pakistan and Bank of Punjab. Knowledge Partners, Pakistan Business Council, Climate Finance Pakistan, Hisar Foundation, and Pakistan Agricultural Coalition. Research Partners, Ipsos and Repu Media Intelligence. Hospitality Partner, Serena Hotels. Airline Partner, AirBlue. Connectivity Partner, Zong 5G. Tea Partner, Vital Tea. Coffee Partner, Cinnabon.
7: City FM 89.
5: You're listening to
8: Nonstop Hits.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट. मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर.
3: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस. जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें,
4: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ,
3: क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक.
4: जो तुम चाहो,
3: डाउनलोड दी ऐप नाउ.
5: क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान इज नो लॉन्गर अ डिस्टेंट हेडलाइन. इट्स इन आवर फ्लडेड स्ट्रीट्स, आवर लॉन्गर हॉटर समर्स, आवर अनप्रेडिक्टेबल सीजंस. Now, your voice can make a difference. Breathe Pakistan, in collaboration with Alertly, is building a nationwide movement, capturing real climate stories from real people. As the official technology partner, Alertly uses AI to map, analyze, and transform citizen stories into actionable climate insights. Because meaningful change begins with real voices and real data. Head to dawn.com/breathepakistan and share your climate story today on Alertly.
6: Breathe Pakistan,
7: a Dawn Media initiative.
6: Let's weather the change
7: together.
1: 89.
8: We're playing your song.
1: You're listening to
9: Non-Stop Hits.

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 5 PM.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: You're listening to City FM 89.
0: Coming up next.
1: Full disclosure.
3: City FM 89.
5: Trending today.
6: After their Coachella debut, Madonna and Sabrina Carpenter have released their collab single titled Bring Your Love. The song comes as Madonna continues to ramp up the rollout for her upcoming album, Confessions 2, her first album in 7 years.
7: Chicken pox yaad hai, ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. कभी सोचा भी नहीं था. तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें.
8: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएसके पाकिस्तान की जानिब से है. मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
9: इस क्रिकेट सीजन इजी पैसा दे रहा है ब्रांड न्यू होंडा सिटी. बस 15 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 2,50,000 का बैलेंस मेंटेन करो और लकी ड्रॉ में जीतो ब्रांड न्यू होंडा सिटी. सिर्फ यही नहीं, 1,00,000 का बैलेंस मेंटेन करने पे हासिल करो इलेक्ट्रिक बाइक्स, आईफोन्स और आईपैड्स जीतने का मौका. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
10: ड्यूलक्स दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी. आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से, जैसे बिल्कुल नया.
11: टेलीनॉर लाया मंथली कॉल प्रीमियम ऑफर. अभी सिर्फ 500 रुपए में ऑफर लगाओ, 3,000 तमाम नेटवर्क मिनट्स पाओ. अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा महीना खुल के करो बात, क्योंकि टेलीनॉर है ना यार. जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू करें.
12: If you're stuck in traffic right now, imagine ditching this noise and landing in a room where it's just music and people actually listening. That's literally what Mehfil is all about. It's not a concert. It's intimate, authentic, and most of all, it's interactive. They're calling it Mehfil, and honestly, sounds like something we need right now. Farhan Saeed and Call the Band are performing alongside the LLMC Ensemble, a rubab orchestra from Hunza. Nostalgic sounds and songs reimagined in a way that has never been heard before. Happening on 8th May in Karachi, 16th May in Islamabad, and 23rd May in Lahore. City FM 89, exclusive radio partners.
13: Rakmi Islamic Digital Bank. यहाँ मिलेंगे real solutions. जैसे बस 5 minutes में अपना account open करें.
14: Fund transfer हो या कोई भी bill payment, always on customer support के साथ.
13: क्योंकि रकमी है 100% Islamic.
14: जो तुम चाहो.
13: Download the app now.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: इस क्रिकेट सीजन इजी पैसा दे रहा है ब्रांड न्यू होंडा सिटी. बस 15 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 2,50,000 का बैलेंस मेंटेन करो और लकी ड्रॉ में जीतो ब्रांड न्यू होंडा सिटी. सिर्फ यही नहीं, 1,00,000 का बैलेंस मेंटेन करने पे हासिल करो इलेक्ट्रिक बाइक्स, आईफोन्स और आईपैड्स जीतने का मौका. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: It's 5:30 PM.
4: City FM 89.
5: इस क्रिकेट सीजन इजी पैसा दे रहा है ब्रांड न्यू होंडा सिटी. बस 15 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 2,50,000 का बैलेंस मेंटेन करो और लकी ड्रॉ में जीतो ब्रांड न्यू होंडा सिटी. सिर्फ यही नहीं, 1,00,000 का बैलेंस मेंटेन करने पे हासिल करो इलेक्ट्रिक बाइक्स, आईफोन्स और आईपैड्स जीतने का मौका. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
6: चिकन पॉक्स याद है, ये शिंगल्स बन के वापस आ सकता है. कभी सोचा भी नहीं था. तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें.
7: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज GSK पाकिस्तान की जानिब से है. मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
8: टेलीनॉर लाया मंथली कॉल प्रीमियम ऑफर. अभी सिर्फ 500 रुपए में ऑफर लगाओ, 3,000 तमाम नेटवर्क मिनट्स पाओ. अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा महीना खुल के करो बात, क्योंकि टेलीनॉर है ना यार.
9: जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू करें.
10: ड्यूलक्स दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी. आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से, जैसे बिल्कुल नया.
11: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस. जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें,
12: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ,
11: क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक.
12: जो तुम चाहो,
11: डाउनलोड दी ऐप नाउ.
13: टेलीनॉर की वीकली एक्सट्रीम प्लस ऑफर लगाओ, 550 रुपए में 60 GB डेटा, 15,000 टेलीनॉर और 300 दूसरे नेटवर्क मिनट्स पाओ. अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा हफ्ता बेफिक्री से अनलिमिटेड स्ट्रीमिंग और सोशलाइजिंग करते जाओ, क्योंकि टेलीनॉर है ना यार. जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू करें. पीटर

0: इस क्रिकेट सीजन इजी पैसा दे रहा है ब्रांड न्यू होंडा सिटी। बस 15 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 2,50,000 का बैलेंस मेंटेन करो और लकी ड्रॉ में जीतो ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, 1,00,000 का बैलेंस मेंटेन करने पे हासिल करो इलेक्ट्रिक बाइक्स, आईफोन्स और आईपैड्स जीतने का मौका। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: घर

0: पूरा आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: टेलीनॉर लाया मंथली कॉल प्रीमियम ऑफर, अभी सिर्फ ₹500 में ऑफर लगाओ, 3000 तमाम नेटवर्क मिनट्स पाओ, अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा महीना खुल के करो बात, क्योंकि टेलीनॉर है ना यार। जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू करें।
2: Aren't beaches just so relaxing? Rising seas are flooding coasts and forcing communities to leave homes they've lived in for generations. Climate change is closer than you think.
3: Breathe Pakistan.
4: A Dawn Media Initiative.
3: Let's weather the change
4: together.
5: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून। तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट, मॉसपेल करेगा घंटों फाइट। मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर।
6: Avail flat 30% off at the Diners Great Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
1: मुबारक हो, यूफोन एंड टेलीनॉर की कॉलिंग फैमिलीज मिलकर हो गई हैं मोर देन 7 करोड़। तो यूफोन से टेलीनॉर एंड टेलीनॉर से यूफोन करो लातादात कॉल्स किसी भी पैकेज पे और रहो कनेक्टेड मोर देन एवर बिफोर।
7: Due to unavoidable circumstances, the venue for Breathe Pakistan International Climate Change Conference 2026 has been changed. The conference, originally scheduled to be held at the Jinnah Convention Center on May 6th and 7th, 2026, will now take place on the same dates, May 6th and 7th, 2026, at the Sheesh Mahal Hall, Serena Hotel, Islamabad. The organizers regret any inconvenience caused and appreciate your understanding and continued interest. See you all in Islamabad.
3: Breathe Pakistan.
4: A Dawn Media Initiative.
3: Let's weather the change
4: together.
7: Principal Partners, United Nations Pakistan, Government of Khyber Pakhtunkhwa, English Biscuit Manufacturers, Capital Smart Motors, OGDC and CVF V20. Supporting Partners, Federal Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Syngenta Biologicals, Mizan Bank Limited, DHL Express, Asian Development Bank, Cambridge, Coca-Cola Pakistan and Bank of Punjab. Knowledge Partners, Pakistan Business Council, Climate Finance Pakistan, Hisar Foundation and Pakistan Agricultural Coalition. Research Partners, Ipsos and Repu Media Intelligence. Hospitality Partner, Serena Hotels. Airline Partner, AirBlue. Connectivity Partner, Zong 5G. Tea Partner, Vital Tea. Coffee Partner, Cinnabon.
8: Event Partner, Jump Activations.
9: City FM 89.
10: You're listening to
11: Full Disclosure with Saba Banu Malik.
12: That was Dominic Fike, Mona Lisa, a throwback coming up next. Here is Timbaland, Nelly Furtado with Give It To Me.
13: Is it going? Is it going?

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: You're listening to City FM 89.
5: Trending today.
6: After their Coachella debut, Madonna and Sabrina Carpenter have released their collab single titled Bring Your Love. The song comes as Madonna continues to ramp up the rollout for her upcoming album, Confessions 2, her first album in 7 years.
7: Chicken pox yaad hai, ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. कभी सोचा भी नहीं था. तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें.
8: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएस के पाकिस्तान की जानिब से है. मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
9: ड्यूलक्स दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी. आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से, जैसे बिल्कुल नया.
10: टेलीनॉर लाया मंथली कॉल प्रीमियम ऑफर. अभी सिर्फ 500 रुपए में ऑफर लगाओ, 3000 तमाम नेटवर्क मिनट्स पाओ. अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा महीना खुल के करो बात, क्योंकि टेलीनॉर है ना यार. जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू करें.

0: Groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: Is cricket season easy paisa de raha hai brand new Honda City. बस 15 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 2,50,000 का बैलेंस मेंटेन करो और लकी ड्रॉ में जीतो ब्रांड न्यू होंडा सिटी. सिर्फ यही नहीं, 1,00,000 का बैलेंस मेंटेन करने पे हासिल करो इलेक्ट्रिक बाइक्स, आईफोन्स और आईपैड्स जीतने का मौका. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: इस क्रिकेट सीजन इजी पैसा दे रहा है ब्रांड न्यू होंडा सिटी. बस 15 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 2,50,000 का बैलेंस मेंटेन करो और लकी ड्रॉ में जीतो ब्रांड न्यू होंडा सिटी. सिर्फ यही नहीं, 1,00,000 का बैलेंस मेंटेन करने पे हासिल करो इलेक्ट्रिक बाइक्स, आईफोन्स और आईपैड्स जीतने का मौका. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
3: चिकन पॉक्स याद है? ये शिंगल्स बन के वापस आ सकता है, कभी सोचा भी नहीं था. तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें.
4: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएसके पाकिस्तान की जानिब से है. मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
5: टेलीनॉर लाया मंथली कॉल प्रीमियम ऑफर. अभी सिर्फ 500 रुपए में ऑफर लगाओ, 3,000 तमाम नेटवर्क मिनट्स पाओ. अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा महीना खुल के करो बात, क्योंकि टेलीनॉर है ना यार. जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू करें.
6: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस. जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें,
7: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ,
6: क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक.
7: जो तुम चाहो.
6: Download the app now.
8: Ever thought climate change could take food off our plates? Floods and droughts are destroying farms across South Asia, leaving families hungry and children malnourished.
9: Breathe Pakistan.
10: A Dawn Media Initiative.
9: Let's weather the change
10: together.
5: Mubarak ho! Uphone and Telenor ki calling families milkar ho gayi hain more than 7 crore. तो यूफोन से टेलीनॉर एंड टेलीनॉर से यूफोन करो लातादात कॉल्स किसी भी पैकेज पे और रहो कनेक्टेड मोर देन एवर बिफोर.

0: पूरा आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: टेलीनॉर लाया मंथली कॉल प्रीमियम ऑफर, अभी सिर्फ ₹500 में ऑफर लगाओ, 3000 तमाम नेटवर्क मिनट्स पाओ, अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा महीना खुल के करो बात, क्योंकि टेलीनॉर है ना यार। जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू करें।
2: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस। जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें,
3: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ,
2: क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक।
3: जो तुम चाहो,
2: डाउनलोड दी ऐप नाउ।

0: City FM 89. It's 8 p.m.
1: This time check is brought to you by Jazz.
2: City FM 89.
3: Trending today.
4: After their Coachella debut, Madonna and Sabrina Carpenter have released their collab single titled Bring Your Love. The song comes as Madonna continues to ramp up the rollout for her upcoming album, Confessions 2, her first album in 7 years.
5: ड्यूलक्स दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से जैसे बिल्कुल नया
6: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें
7: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ
6: क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक
7: जो तुम चाहो
6: डाउनलोड दी ऐप नाउ

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: ड्यूलक्स दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी, आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से, जैसे बिल्कुल नया।
4: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस, जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें,
5: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ,
4: क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक,
5: जो तुम चाहो।
4: डाउनलोड द ऐप नाउ।

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: It's 10:30 p.m. We are
4: City FM 89.
5: चिकन पॉक्स याद है, ये शिंगल्स बन के वापस आ सकता है, कभी सोचा भी नहीं था। तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें।
6: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें। खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो। ये पब्लिक सर्विस मैसेज GSK पाकिस्तान की जानिब से है। मज़ीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें।
7: इस क्रिकेट सीजन इजी पैसा दे रहा है ब्रांड न्यू होंडा सिटी। बस 15 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 2,50,000 का बैलेंस मेंटेन करो और लकी ड्रॉ में जीतो ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, 1,00,000 का बैलेंस मेंटेन करने पे हासिल करो इलेक्ट्रिक बाइक्स, आईफोन्स और आईपैड्स जीतने का मौका। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: Chicken pox yaad hai. Ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. कभी सोचा भी नहीं था. तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें.
3: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएसके पाकिस्तान की जानिब से है. मज़ीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
1: क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान इज नो लॉन्गर अ डिस्टेंट हेडलाइन. इट्स इन आवर फ्लडेड स्ट्रीट्स, आवर लॉन्गर हॉटर समर्स, आवर अनप्रेडिक्टेबल सीजंस. Now, your voice can make a difference. Breathe Pakistan, in collaboration with Alertly, is building a nationwide movement, capturing real climate stories from real people. As the official technology partner, Alertly uses AI to map, analyze, and transform citizen stories into actionable climate insights. Because meaningful change begins with real voices and real data. Head to dawn.com/breathepakistan and share your climate story today on Alertly.
4: Breathe Pakistan,
5: a Dawn Media initiative.
4: Let's weather the change
5: together.
6: Karachi, are you ready? Try Wah Events presents a night that transcends music. This isn't just a performance, it's a soul-stirring takeover. Witness global superstar Atif Aslam live as he brings his legendary energy to stage on 8th May 2026 at the Moin Khan Academy DHA Phase 8. Get your tickets now from Ticketwala. City FM 89, exclusive radio partners.
7: City FM 89, where are you playing the song?
1: You're listening to
8: Beat Camp.